0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ खाने के फवायद जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे मर्दाना कमजोरी को दूर करे हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे मैदे की गैस जलन तेजाबियत बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे बवासीर खूनी उबादी कब्ज और मतली में मुफीद है मालिश के फवायद सर दर्द कमर दर्द पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात बालों को लंबा घना और सिया चमकदार बनाए खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है जिस्मानी थकावट जहनी सुकून हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है तरीका इस्तेमाल सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे कील मुहासे छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे आपके चेहरे गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा शफाफ बेदाग गोरा चेहरा बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला करके हल्का सा मसाज करें सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860 0300-585-8481
0: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ खाने के फवायद जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे मर्दाना कमजोरी को दूर करे हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे मैदे की गैस जलन तेजाबियत बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे बवासीर खूनी उबादी कब्ज और मतली में मुफीद है मालिश के फवायद सर दर्द कमर दर्द पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात बालों को लंबा घना और सिया चमकदार बनाए खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है जिस्मानी थकावट जहनी सुकून हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है तरीका इस्तेमाल सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
2: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम पर होल सेल रेट तला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला, रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कप शप पे नुमयात साते डबई सुर दे और कार्ये स्पिन दे कप शप पे।
1: पिशावर्टी दखवन मायार और द इतबार नुमदी उस पिशावर्टी पावटी ग्राम तुरगढ़ शंगला अलई

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
3: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری۔

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

बड़ग्राम किस गांव से? खंडर से जी, बताइए। यार मुझे गुजरी किधर आती है यार, मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने उर्दू सीखी। हाँ उर्दू में मैं कर सकता हूँ लेकिन गुजरी में नहीं कर सकता। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि मुझे गुजरी समझ आती है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। बिल्कुल है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि गुजरी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर ले इधर से, लेकिन अगर हम ठीक है कोशिश करते हैं। सही है,